करुणालय है अर्थालय है खल खंडन है मह मंडन है जगदेश्वर है परमेश्वर है। हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जगत गुरु हे संसार पाप हरणे करुणा में सब दुख हरो शरण जोग दयाले हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मैं आकरूं

श्रवण सोए सुन निंद बीजा, रसना सोई लोग मीठे साद, मन सोया माया बिस्माद।

0: काची देह मोफुन बांधी सठ कठोर कुचील को ज्ञानी काची दे मोफुन बांधी सठ कठोर कुचील को ज्ञानी तावत भरमत रह नहीं पावत पार ब्रह्म की गत नहीं जानी जोबन रूप माया मद माता विचरित विकल बड़ो अभिमानी परधन पर अपवाद नार निंदा यह मीठी जी माए हितानी बलवंश छप करत उपावा पेखत सुनत प्रभ अंतर जामी शील धर्म दया सुच नास्त आयो शरण जी के दानी कारण करण सुमरथ श्री धर राख ले हो नानक के स्वामी कीरत करण शरण मन मोहन जोहन पाप बिदारण को हर तारण तरण सुमरथ सवै विध कुलह समूह उदाहरण सौ चित चेत अचेत जान सत संगत परम अंधेर मोयो गत धाओ मूर्त घरी चसा पल सिमरन राम नाम रसना संग लो हो छो काज अलप सुख बंधन कोट जन्म कहां दुख पाओ सिख्या संत नाम पद नानक राम रंग आत्म स्यों रहो रंचक रेत खेत तन निर्मत दुर्लभ दे सवार धरी खान पान सोधे सुख भुंचत संकट काट विपत हरी मात पिता पाई अर बंधप बुझन की सब सूझ परी ब्रजमान होवत दिन प्रतनित आवत निकट बिखम जरी रे गुणहीन दीन माया कृम सिमर स्वामी एक घरी कर गहले हो कृपाल कृपा निधि नानक काट भरम भरी रे मन मूस बिला मह गर्भत करतब करत महामुघना संपत डोल झोल संग झूलत माया मगन भ्रमत घुगना सुत बनता साजन सुख बंधप तास्यो मो बढ़ो सो घना बोयो बीज अहं मम अंकुर बीतत औध करत अघना मृत मझार पसार मुख निरखत पुंचत भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुपना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुपना
1: सत सूरा शील बलवंत सत भाए संगत सगन गुरु मत निर्वैर लीना जिस धीरज धुर धवल दुजा सेत वैकुंठ बीना पर सह संत प्यार जह करता रे संजो सतगुरु सेव सुख पायो अमर गुर की तो जो नाम नाम नाम रस खान हर भोजन नाम रख सदा चाहे मुख मिष्ट बानी तन सतगुरु सेवियो जिस बसाए गति अगम जानी कुल समूह समुद्रे पायो नाम निवास सक्यथ जन्म कल उजर गुर परस्यो अमर प्रकाश बारज कर दाहिने सिद्ध सन मुख मुख जो वह रिद्धि बसै बावां जो तीन लोकांतर मोह हृदय वसै एक ही ओ सोए रस तिन ही जातो मुखों भगत।

0: जी गुर अमर बन जाए, नैन तपर सकियत नैन गुर अमर पिख जाए, श्रवण तपर सकियत श्रवण गुर अमर सुन जाए, सकियत सो हियो जित हियो वसै गुरु अमरदास निज जगत पित, सकियत सो सिर जालप बनै जो सिर निवै गुरु अमर नित, सकियत सो सिर जालप बनै जो सिर निवै गुरु अमर नित,
1: सतनाम कर सास सो दृढ़ नानक संग रियो, काते अंगद लैना परिगत ताज करने लिमरियो, तित कुल

निरंकार आकार अचल पूरन अविनाशी अर्थवंत आनंद रूप निर्मल विनाशी गुण गावे बेअंग अंक एक तिल नहीं पासी जाको होए कृपाल सो जान प्राप्त में मिलासी तन तन ते तन जान जे कृपाल हर हर बियो हर गुरु नानक जिन परसियो से जन्म मरण तो तेरे हो सत सत हर सत सत सते सत पणिया दूसरे आन ना अवर पुरख पौरातन सुनिया अमृत हर को नाम लात मन सब सुख पाए जे रसन चाखियो ते जान त्रिपतियां कहाए जे ठाकुर सो प्रसन्न पियो सत संगत ते प्यारा हर गुरु नानक जिन परसियो तिन सब कुल कियो उधार सत समा दीवान सत सच्चे पै धरियो सच्चे तख्त निवास सचित पावस करियो सत श्री जियो संसार आप

ब्रह्मलो जय कृपाण भोलो गोविंद सर्व सुख तिन्हु पाए हर गुरु नानक जिन परसियो ते फिर बौड़ जून ना आए ते बौड़ फिर जून ना आए कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन विद उस्तित करिया सिद्ध साधक ते तीस को तिरकी मना परिया ब्रह्माद सनकाद सेख गुण अंत ना पाए अजोग्यो नहीं जाए पूर सर्व यो समाए जे गाडी सिलग दियार प्रभ से जान लगे भगते हर गुरु नानक जिन परसियो ते इतई उतई सदा मुकते प्रभ दातो दातार परियो जातित इत सरना मिले दान संतरीन जे

छोरी न छूटा ऐसी माधव खींचतनी दिन सरन मन माहे बसता तू कर कृपा प्रभु अपनी बल बल जाओ श्याम सुंदर को अकात कथा जा की बात सुनी जन नानक दासन दास कहियत है मोहे करो कृपा ठाकुर अपनी।

नानक कस मल जाए कस मल जाए हर गां नानक कस मल जाए दवन दवरी गे गे दवा दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम द

पार्स भेद पर्स करो पानदास को आस जगत गुरु की पार्स भेद पर्स करो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुर सिर हाथ तरयो कसमल जाय हर हन।

अमर गुरु की सत, गुरु अमर गुरु श्री सत, कल युग राखी पत, अग्नि देखत गत, चरण कमल दास, चरण कमल दास, सब विद्मान्यो मन, तभी पयो प्रसन्न, गुरु जोग तख्त दियन, गुरु रामदास, नाये रामदास सरी, नाये रामदास, नाये रामदास सरी, दस सरी दस सर, नाये रामदास सरी, नाये रामदास, नाये रामदास सरी, हम अब गुण

सुत दारा शोप्रीत लगाई एक उत्तम पल सुनियो गुरु संगत एक उत्तम पल सुनियो गुरु संगत।

रघुवंश रघुवंश तिलक दशरथ कारी मन बाछे ताकी शरणंग रघुवंश तिलक दशरथ कारी मन बाछे ताकी शरणंग सतगुर सेव अलखगत जाकी।

सो सत श्री अकाल जी। बड़े प्यार नाल गुरु अगे अरदास असि कर रहे हां, जोड़ी गुरु महाराज की हजूरी विच आके सजगे हन बड़े प्यार नाल गुरु अगे अरदास। आप जो शब्द पढ़ रहे हो, किता लोड़िए कम सो हर पै आखिए, कार्ज दे सवार सतगुर सच साखिए। गुरु पातशाह कृपा करे, उस तो बाद अरदास होएगी गुरु महाराज की हजूरी विच, हुक्म लिया जाएगा और पले थेंडे लागी लावा। बड़े प्यार नाल आप सारे केतुक नू कार्ज दे सवार सतगुर सच साखिए, उस तो बाद जो नंद कार्ज है शुरू करिए।